जहद दुनिया भर में जारी रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक पेश की गई इस फाइल में अनातोलिया एजेंसी की जानब से फिलिस्तीन में रिकॉर्ड की गई तस्वीर और वीडियोस भी शामिल हैं। बताया गया है कि बैनुल अक्वामी अदालतों में यह बसरी दस्तावेजात शवाहिद का सबसे अहम जरिया हैं। तुर्क कानूनदानों ने आज़म का

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: चीन के सदर शी जिनपिंग ने मशरिक वस्ती के ममालिक की एक नया सिक्योरिटी ढांचा तश्कील देने की हिमायत करते हुए कहा है कि मसला फलस्तीन को पसे पुश्त नहीं डाला जाना चाहिए। चीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी जिनहुआ की रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग ने यह बयानात काहिरा में मिस्र के सदर अब्दुल फतह अल सीसी के साथ मुलाकात के दौरान दिए। शी जिनपिंग ने खित्ते में बैरूनी मदाखलत की मुखालफत करते हुए कहा कि चीन मशरिक वस्ती के लिए एक नया सिक्योरिटी ढांचा कायम करने के सिलसिले में खित्ते के ममालिक की हिमायत करता है। उन्होंने मज़ीद कहा।

पहला मारूफ मस्नूई मादनी पानी 1741 में बरतानी डॉक्टर विलियम ब्राउन रेग ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को नलके के पानी में मिलाकर हासिल किया था। ये बोतल का पानी कार्बन डाइऑक्साइड के असर से ढक्कन खोलने पर फूल जाता था और पीने पर मेदे में हल्का सा आराम पहुंचाता था। लेकिन बरतानवी डॉक्टर की यह दरियाफ्त ज़्यादा तवज्जो ना मबजूल कर सकी क्योंकि उसने नल का गंदा पानी इस्तेमाल किया था। इन्हीं सालों में बरतानवी कीमियादान जोजफ प्रेसले, जो कीमिया के शोबे में काम कर रहे थे और इस मकाले को साबित करने की कोशिश में थे कि हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो मुख्तलिफ गैसों का मुरक्कब है, अपने साइंसी तजुर्बात के लिए अपने घर के करीब एक शराब खाने में वो ठहरे। एलन प्रेसले अक्सर शराब खानों में जाते थे। उन्होंने बियर के उबाल के अमल के दौरान खारिज होने वाली गैसों को इकट्ठा करके तजुर्बा किया। इत्तफाक से दरियाफ्त किया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में तहलील हो सकती है। प्रेसले, जिसने यॉर्कशायर शहर के चर्च में एक पादरी के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी और अपने अकायद की वजह से अल्कोहल वाले मशरूबात से वो दूर रहते थे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक खुशगवार, जायकेदार और जरासीम से पाक मशरूब बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहा। बीमार होने पर प्रेसले ने पहले नल के पानी को उबालकर जरासीम से पाक किया, बोतल में भरे हुए पानी में कुछ मादनियात शामिल किए और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इंजेक्शन लगाया। नतीजा एक चमकता हुआ मशरूब था जिसे आज हम सोडा या मस्नूई मिनरल वाटर कहते हैं। प्रेसले की यह दरियाफ्त ने सबसे पहले इसी शहर के मजहबी लोगों में बहुत तवज्जो मबजूल करवाई जहां वो रहता था और वक्त के साथ साथ ये पूरे मुल्क में फैल गई। एक शौकिया जर्मन कीमियादान जैकब श्वेब था जिसने मस्नूई मिनरल वाटर बनाया जो ज़्यादा खाने के बाद हमारा पहला जरिया था। यह दरियाफ्त यूरोप में फैल गई। श्वेब का बुनियादी मकसद एक ऐसी माया दवा तलाश करना था जिससे मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सके। श्वेब ने सबसे पहले प्रेसली के तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए मस्नूई मिनरल वाटर बनाया और फिर चीनी और क्विनिन मिलाकर टॉनिक हासिल करने में कामयाब हो गए। जर्मन कीमियादान श्वेब की कुनियत से कायम होने वाली कंपनी कई सालों से मस्नूई मिनरल वाटर और टॉनिक दोनों की तैयारी में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।